ਤਿੰਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਜਗਾਵੈ। ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਸਾਵਨ ਦਾਨ ਦਾ ਸਸਦਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਤਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਕਿਆ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾਰ ਪੁ ਨਿਰਣ ਗਮਾ ਗਮ ਪਾਰਾ। ਸਭ ਤਿਆਮ ਸਭ ਤਿਆਮ ਹੈ ਤੋਜੀ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਜਣ ਵਾਰਾ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਹਰ ਤਿਆ ਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ ਸਭ ਦੂਵ ਸਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਹਰੇ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰੇ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਗੜ ਗੜ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ ਹਰੇ ਕੋ ਪੁਰਖ ਸੁਮਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਬਿਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੈਨ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਪ ਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੁਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਰਬਾਣਾ। ਹਰ ਤਿਆਵੇ ਹਰ ਤਿਆਵੇ ਤੁਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੋਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੂਤ ਭੈ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਤੁਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਪਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਪਉ ਸਲਾਹੰਤੋ ਜੀ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਤ੍ਰਿਨ ਕਰੇ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ ਤਬ ਤਾਪੇ ਜਵੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜੇ ਬਹੁ ਸਿਮਰ ਸਾਹ ਜੀ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖੰਡ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਪ ਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੋ ਜੇਵੜਾ ਵਰਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੋ ਜੋ ਏਕੋ ਸਦਾਹਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ ਤੂੰ ਨੇਚਰ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਧੇ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੇ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੋਈ। ਤੁਧੇ ਆਪੇ ਸੇ ਸਭ ਪਾਈ ਜੀ ਤੁਧੇ ਆਪੇ ਸੇ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਸਭ ਸੇ ਕਾ ਜਾਣੋ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਡਾ ਸਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਓ ਪਾਣੀ ਰਹਾਓ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭ ਨਹੀਂ ਧਿਆਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮਹਲਾਦਾ ਮਨ ਮੋਗਵਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝੀ ਮਾਹੇ ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ। ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ ਹਰ ਗੁਣ ਸਾਧੀ ਆਪ ਖਾਣੇ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨ ਸੋ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ ਸੋਏ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਵਲੈ ਭੈਲੇ ਨੂੰ ਆਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵ ਤਿੰਨੇ ਕੀਆ। ਪੰਗ ਜਮੋ ਪਾਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤੈਂ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਮਾਰੇ ਨਚੇ ਸਮੂੜ ਮੰਗਾ
हर बिसर तेरे गुण गले आ रहाओ। ना हो जति सती नहीं पड़िया, मूरख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरना, जैन तो ना ही विसरिया। आसा महला पंजवा, पई प्राप्त मन उदे हुरिया। गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया, अवर काज तिर किते ना काम। मिल साध संग पाई केवल नाम, सरन जाम ला पव जल तरन कह। जन्म बिरथा जात रंग माया के रहाओ। जाप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साधन जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की राखो शर्मा। पातशाही दसवीं कव्यो वाज बेनती चो पई, हमरी करो हाथ दह रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा, ताव चरण मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दो सब है तुम काहो। आप आदे मोए बचाओ, सुखी बसे मोरो परवारा। सेवक से सब है करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए। सब हरण को आसंगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा। तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊं। जो बार चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है। चौं चौं सत्र हमारे मारी है, आप आदे मुझे अभरी है। मरण कार का त्रास नवरी है, हो जो सदा हमारे पच्छा। सिरिया तो जो करियो रच्छा, राह लियो मोए राखण हारे। साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता। तुम हो पुरी चतुर्दास कंता, काल पाए ब्रह्म अवतरा। काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर भीम प्रकाशा। सगल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव की हो। वेद राज ब्रह्मा ज्योति हो, जवन काल सब लोक सुवारा। नमस्कार है ताए हमारा, जवन काल सब जगत बनायो। देव दया जशन अपजायो, आद अंत के अवतारा। सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसी को हमारी। सगल पर जाज ने आप सवारी, सेवकन गो सेव गुण सो दियो। सतरन को पल मुंबद कियो, कड़कड़ के अंतर की जानत। पले बुरे की पीर पिशानत, चीटी ते कुंचरे अस्तूला। सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दो पाए ते दुखी। सो पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर विशान। कड़कड़ के पढ़ पढ़ की जान, जावुद कर करां कर तारा। पर जा तर तव दे अपारा, जाबा कर कर तो हो कब हूं। तुम मैं मिलत दे तर सब हूं, जेते बरन से सब तारे। आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही तेरा तनरालम। जान लबे भेदर आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब। आद नीलन आद संभ, ताका मूड़ चात भेदा। जाको भेव न पावत बेदा, ताको कर पानुन मानत। महा मूड़ का भेद न जानत, महादेव को कह सदाश। निरंकार का चिन्हित न भेव,
आप अपनी बुद्ध है जेती बनना तेन पिन तो है तेती तुमरा लखानो जाए पसारा के बैसा प्रथम संसारा एक रूपन उप स्वरूपा रंग प्योरा कहीं पूपा अंड जेर से तजकीनी उत्पज खान बहोर रच दीनी कहूं पूरा जाहूं बैठा कहूं सिंह प्यो शंकर कैठा सगरी से दखाए अचंभव आज गा शुरू से अंभव आप रक्षा मेरी तुम करो सिख अबार सिख संगरो दो जते उठो तो पाता सगल मलेश करो रणगाता जया तू सब सरणी परे तिनके दुष्ट दोत है मरे पुरख जौन पा परे ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नहीं आए हैं और अच्छा होए तय सब काला दुष्ट हरी टरे तद काला कृपा दृ तन जाए न हर हो ताके ताव तनक में हर हो रेद सिद्ध कर्म सब होई दो स्वय सह सके न कोई एक बार जन तुम्हें संभारा काल फाते तमें उबारा जे नर नाम त्यारो कहा दार्द दुष्ट दो तेरा खड़ग के तमें शरण तिहारी आप दे लियो अबारी सर्व टोर मोहो सहाई दुष्ट दो ते लियो बचाई सवैया पाएंगे जब ते तुम रे तब ते को आतरे नहीं आने हो राम रहीम पुराण कुरान ने कहे मत एक न माने हो सिमरत शास्त्र बेसब है बहुपेद के हम एक न जाने हो श्री आसपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोए बखाने हो दो हेरा सगल द्वार को छाड़ के गहो तुम्हारो द्वार बाहें गए की लाज अस गोविंदास तुहार राम कली महला तीजा आनंद क्यों ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर दा पाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावणे आईयां शब्दो तां गावो हरि केरा मन जनी वसाया कहे नान गया आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ये मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर ना रहो तू मन मेरे दूसा विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गला समरा स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरे करदा तेरे सब कुछ है जे दे सो पावे सदा से सला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसे आ वाजे शब्द घनेरे कहे नान सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम दार मेरा जिन पुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन वसया जिन शां सब हो जाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जे धियां वड्याइया कह नानक सुनो संतो शब धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पन शब्द कर सुभागे शब्द वाजे कला जिद कर तारी आ
पविंदो तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुझिन को से नाम हर के लागे कहे नान ते सुखोवा तित कार अन हद बाजे आनंद सुनो वड पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल भसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै स्वर से पूरे गुर ते जानी सुनते पनीत कहते पवित सतगुर आपर पूरे बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुदावणी महला पंजवा थाल वे तिन वस्तु पईयो सासन तो विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सदारो जे को खावे जे को पूंचे तिसका होए अदारो एह वस्त जी न जाए नेतन ठाकुर तारो तम संसार चरण लग तरी है सब नान ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जा तो नाही मैनो जो कितोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पे हो तरस पे आ मेहरामत हो सतगुर सजन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवै हरिया तरस पया मेहरामत हो सतगुर सजन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवै हरिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

गुरु रामदास राखो शरणाई वाहिगुरु जी फरीदा लोड़े दाख बिजौरिया किकर बीजै जट

जुगो जुग अटल, चवर शतर तखत दे मालक, हाजरा हजूर जारा जहूर शब्द गुरु। बाणी के बोहित अमृत के दाते, दसा पातशाहियां दी जोत। साहिब सच्चे पातशाह सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच शामां वेले दे सज्जे दीवानां दीआं हाजरियां भर रहे अति सत्कारयोग सन्मानयोग सत संगी जनों, सतगुरां ने बड़ी अपार बख्शिश रहमत कीती है आप सब। गुरदेव की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ के सतगुरां दी अमृतमई बाणी दे कीर्तन मेरे तो पहला गुरु करके रागी सिंघा पासों सरवण कर रहे सी। तो आओ साध संगत, समा है लड़ीवार चल रही गुरबाणी दी विचार दा। भगत फरीद साहब जी दे श्लोकां नूं आपां विचार रहे हां। तकरीबन 22 श्लोकां दी विचार हुण तक आप जी दे नाल सांझी कीती जा चुकी है। तो अगलेरे श्लोकां दी विचार नूं आरंभण तों पहलां दर घर दी मर्यादा नूं मुख रखदिआं फतेह दी सांझ पाईए जी। कोई रसना वांझी ना रहे, इक्के वारी कहण ते आखणा जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शेख फरीद साहब ने इस पावन बाणी दे विच वख वख विषयां नूं बड़ी बेबाकी दे नाल छोया है। तो अज जिहड़ा सलोक 23 नंबर है उहदे विच शेख फरीद साहब ने एक अटल सच्चाई जिहड़ी कुदरत दी है उहदी उदाहरण वरत के, उहदी एग्जाम्पल वरत के मनुख दे दुखां दा जिक्र कीता है। असीं जदों भी अपने जीवन नूं जिउने आ, कोई जीवन विच उतरा चढ़ा आउंदा है ते कई वार बंदे दा मन सुभाविक ही गल कहिंदा है वी इह जो मैं दुख झल रिहा हाँ इह मेरे पिछले जन्मां दा कोई दुख होवेगा जिहड़ा मैनू मिल रहा है। ते तुसीं आम वेखो अमूमन साडे समाज की एक साइकी यह भी काम करती है कि जे बंदा दुखी है तो उन्हें बहुत माड़े कर्म किए सी, चाहे वह पिछले जन्म के विच किए सन, तो इस जन्म विच उन्हूं उहदा फल भोगना पै रहा। पर जदों असीं धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी नूं पढ़दे हां तो सतगुरु ने बाणी विच इह ख्याल प्रगट किया है कि यह सारी गल सच नहीं हैगी। कि जे आपां इहनूं इदां मन के चलीए कि बंदा जो भी है वह अपने पिछले कर्म करके है, तो यह जिहड़ी गल है यह वाजिब नहीं है। बंदा सबरदा भी अपनी सियाणप ते लियाकत करके है, तो विगड़दा भी अपनी ज्ञान की समझ की घाट करके है। अक्सर जदों इदां दे बचनां नूं आपां विचारदे हां तो मैं एक बेनती करदा हुन्ना कि इदां समझ लो कि जिवें असीं दो लत्तां दे उत्ते चलदे हां, एक लत्त जे तुसीं उपर चुकदे हो तो उह तुहाडे हथ विच है पर दूजी नहीं चुक सकते, फिर असीं डिग पवांगे। तो बिल्कुल इस तरीके नाल जिंदगी दी हर घटना नूं रब दे पल्ले पा देना कोई सियाणप नहीं है। तो बहुत कुछ बंदे दे हाथ विच भी है, बंदा बीजदा भी है। जे बंदे दे हाथ विच कुछ ना होवे ते दुनिया उत्ते जिन्ने धार्मिक ग्रंथ लिखे गए ने उन्हां दा फिर कोई माना नहीं रह जांदा।

अपने सुभा मुताबक जिहड़ा है वो कर्म करना है। सूरज डुबदा है चढ़दा है, पौन पानी हवा उहदे पै दे विच वग रही है, उहनूं कोई रोक नहीं सकदा। पानी प्यास बुझाउणों दुनिया का कोई तपस्वी इस गल नूं हटा नहीं सकदा। तो यह सारा कुछ कुदरत दे कंट्रोल विच है, कुदरत दे हथ विच है। पर एक चीज है जिहड़ी बंदे दे खुद दे हथ विच है, जिथों वह दुखी है, दुखी है बंदा अपने सुभा करके। तो सुभा नूं बदलना जिहड़ा है वह बंदे दे अपने हथ विच है। सतगुरु की बाणी का एक बड़ा प्यारा ख्याल है, महाराज ने बख्शिश भरिया एक वाक रखिया, आख्या तेरे हुक्मे सावन आया, मैं सत का हल जोआया। जिवें पहले समयां दे विच ना साध संगत जिहड़ी खेती सी वह बारिश मीह दे उत्ते डिपेंड सी। तो आपां जाणदे हां कि कई बार बारिश इन्नी ज्यादा हो जानी भी फसलां तबाह हो जाणियां, ते कई बार ऐसा वापरना भी बारिश होनी ना ते फसल भी ना होनी, तो दोवां ही तरीकियां नाल काल पै जांदा हुंदा सी। हुण ते बंदे ने दरियावां नूं नक्के ला ले, बड़े प्रबंध बंदे ने ऐसे कर ले, बंदा जिदा जिदा डिवेलप होया, जिदा जिदा बंदे का विकास होया है उदा उदा बहुत फर्क पिया। पहला खेतीबाड़ी कोई फसल भी इन्नी ज्यादा नहीं सी, लोग भुखे मरते सन। तुसीं कदी दुनिया विच वापरन वालियां क्रांतियां दे इतिहास नूं पढ़ के वेखो। तो अज जिहड़ी है खेड बड़ी उल्ट है। मैं किसी सज्जन नूं सुन रहा सी, वो कहिंदा सी अज नौबत यह आ चुकी है भी उन्ने लोग भुख ना नहीं मरते जिन्हें मोटापे नाल मर जाते ने। अज खेड उल्ट चल पई है, अज खाण नूं बहुत कुछ है। हाँ, जिथे नहीं है उत्थे बिल्कुल नहीं है, नहीं तो तुसीं वेखो किन्ने ऑप्शन अज जिहड़े खाण पीण दे ने, किन्ना कुछ जिहड़ा है वह तैयार हो रहा साडे सन्मुख ही है ना, सामने ही है। तुसीं इंडिया नूं भी जदों पढ़ोगे ना थोड़ा जिहा, जिन्हों हरी क्रांति कहिंदे ने, हरी क्रांति की सी भी जदों कणक दे हाईब्रिड बीज आए, जदों रेहां स्प्रेहां दा दौर आया, तो वड्डी तादाद विच जिहड़ा है पंजाब दे विच खास करके एक बदलाव आया, क्योंकि धरती उपजाऊ सी उदों पंजाब ते हरियाणा इक्को ही सन। तो वड्डी तादाद विच जिहड़ी कणक है सरपलस होई, जिहड़े हिसाब नाल साइंस ने डिवेलपमेंट कीती। इहदे वेखो होर जदों इहनूं तुसीं होर एनालिसिस करोगे, समझोगे, गल नूं विचारोगे, अज साइंस जिहड़ी है वह टीके ला ला के किन्ना कुछ है जिहनूं तैयार कर रही है। जिहड़ी फार्मिंग हो रही है, मुर्गियां दी फार्मिंग जिहड़ी हो रही है, वह भी इदां ही है सारी। भी जिहड़ा आम एक चिकन जिहनूं आपां कहिंदे, मुर्गा जिहनूं कहिंदे आ, वह 16 हफ्तियां विच तैयार हुंदा है, पर जिहड़ा अजोका है वह 6 वीकां विच तैयार हुंदा है। तो इस करके बंदा अज भुख नाल घट मर रहा है ते खा के ज्यादा मर रहा है। जदों असी अपने पुरातन सारी हिस्टरी नूं इतिहास नूं पढ़दे हां ते इस गल दा सानू सहजे पता लग जांदा है, असी जाण लैने आ इस गल नूं वी भाई पहलां जदों खेतीबाड़ी दी आमदन इन्नी नहीं सी कोई, उदों लोड़ मुताबक, ईवन जदों तुसीं सतगुरु दी बाणी नूं पढ़ोगे ना, तो बाबे ने उस वेले का भी जिक्र किया है, बाबा कबीर साहब का एक बचन आपां पढ़िया विचारिया भी है पहला, भी दोए पुड़ चक्की जोड़ के पीसण आए बहेठ, सतगुरु गुरु नानक साहब ने लिखिया। फिर माई दे बारे जिक्र किया कबीर साहब ने भी, एक माई गुआंढियां दे घर दे विच चक्की पीण गई, आटा पीसण गई, लोड़ मुताबक पीहदी है। तो यह भी दौर जिहड़ा है ये साडे कल्चर विच साडे एनवायरमेंट दे विच रहा, भी जिन्नी कु जरूरत सी उन्ना कु उन्होंने कणक जां आटा जिहड़ा है वह पी लैना, फिर उहदे मुताबक चलना सारा कुछ। तो सतगुरु ने बाणी विच जिहड़ा मैं उदाहरण तुहानूं देण लगा सी, गुरदेव ने आख्या तेरे हुक्मे सावन आया, हे अकाल पुरख वाहिगुरु तेरे हुक्म दे विच एक सौण दा महीना आया, सौण दा। हुण जदों मीह आया किसान खुश होया, क्योंकि उहदी हुण बीजी होई जिहड़ी फसल सी उहनूं जल मिल जाणा, उहनूं पाणी मिल जाणा। तो महाराज ने आख्या तेरे हुक्मे सावन आया, मैं सत का हल जोआया। मैं की कीता, मैं हल जोया, जिवें एक किसान अपनी खेती नूं पालण दे लई जदों वह खेती वत्र विच आउंदी है उन्हों

चिंता भय आप कराए सी अचिंत भी आपे दे नानक सो सलाही है जे सबना सार करे महला पनमा।

औध पुनी खिन माए कबीर काया काची घर वे केवल काची तात साबत रखे तराम पज नाहे ता बिनती बात कबीर के सो कुकिए ना सोइए असार रात दिवस के कुकने कबहू के सुने पुकार कबीर काया कजरी बन पिया मन कुंचर मैं मंत अंकस ज्ञान रत्न है केवट बिरला संत कबीर राम रतन मुख उथरे पारख आगै खोल कोई आए मिलो खो गाह के ले गो महके मोल कबीर राम नाम जान्यो नहीं पाल्यो काटक कुटंब तंदे ही मैं मर गयो बाहर पही न बंब कबीर आखी केरे मट के पल पल गई बहाए मन जंजार न छोड़े जम दिया दमामा आए कबीर तलवर रूपी राम है फल रूपे बैराग छाया रूपे साध है जिन तजिया बाद विवाद कबीर ऐसा बीज बोए बारह मास फलांत शीतल छाया गहर फल पंखी केर करंत कबीर दाता तरवर दया फल उपकारी जीवंत पंखी चले दिशा बरे बिरखा सो फल फलंत कबीर साधु संग प्राप्ते लिखिया होए ललाट मुकत पदार्थ पाई है ठाक ने अब कटकाट कबीर एक करी आदि करी आदि हूं ते आद भगतन से ते गोष्ठे जो कीनो सो लाभ

ते सब रसत जाहि नीचे रोन कर रहो ले साजन खटमाय सब रस खेलो पीसो किसी लिखावे नाय आठ जाम चौसठ करी तो निरखत रह जियो नीचे लोन क्यों करो सब काट देखो पियो सुन सखी पी मैं जियो बसै जी मैं बसै के पियो जियो पियो बुझो नहीं काट मैं जियो के पियो कबीर बामन गुरु है जगत का भगतन का गुरु नाहे अर्ज उर्ज के पच मुआ चारो बेदो माए हर है खांड रेत में बिखरे हाथी चुनी न जाए

शीस काट कर गोए, खेलत खेलत हार कर, जो किश होए ता होए, कबीर जो तुह साध प्रेम के,

ढूंढत डोले अंधगत अरचिंत नाही संत, अरचिंत नाही संत कह नामा क्यों पाई है बिन भगतो भगवंत।

फरीदा जंगल जंगल क्या पवहे, वन कंडा मूड़ हे, वसी रब हे आली है, जंगल क्या टूडे हे। फरीदा इन्नी निकी जंगी है, थल डूंगर पव्योम, अज फरीदा कुजड़ा सह कोहा थी ओम। फरीदा राती वड्डिया तुख तुख उठन पास, तैगत नादा जीवया जिन्ना बडानी आस। फरीदा जे मैं हुंदा बारिया मिता आड़िया, हेड़ा जल मजीठ ज्यों ऊपर अंगारा। फरीदा लोड़े दाख बजोरिया कि कर बीजे जट, हंडे उनक ताईं दा पैदा लोड़े पाट।

मर्ग सताणी चित तार साई जाए संभाल जिथे ही तो वंजना फरीदा जिनी कमी नाही गुण ते कमड़े बेसार मत सिर मंदा थी भई साई दे दरबार फरीदा साहिब दी कर चा करे दिल दी लाए परांद दरवे सानू लोड़ी है रुखा दी जी रांद फरीदा काले मैंडे कपड़े काला मैंडा बेस गुनही भरिया मैं फेरा लोक कहे दरवेस तत्ती तोए न पल्लवे जे जर डुबे दे फरीदा जो डुहागण रब दे चोरेंदे चोरे जा कवाओ ता चाओ विवाही ता मामले फरीदा इहो पछोताओ वत कुवारी ना थी है कलर केरी छपड़े आए उलथे हंज चिंजू बुड़ ना पीवै है उड़न संधि डांज हंस उडर कुदरे पिया लोक बटारण जाए गहला लोक न जानदा हंस न कुदरा खाए चल चल गईया पंखिया जिनी बसाए तल फरीदा सर परिया पी चल से थके कवल अकाल फरीदा इट सराने पोए सबन कीड़ा लड़ियो मास केतड़िया जुग बापरे एकत पया पास फरीदा पन्नी कड़ी सवन वे टूटी नागर लाज अजराइल फरेसता कै कर नाठी अज फरीदा पन्नी कड़ी सवन वे टूटी नागर लाज जो सज्जन पोए पार थे से क्यों आप अज

नया या पंजे भक्त मसीता उठ फरीदा उजू साज सुबे निभाज गुजार जो सिर साई नान फै सो सिर कापे उतार जो सिर साई नान फै सो सर की जय काए कुन्ने हेठ जलाई है बालन संदे थाए फरीदा किथे तांडे मापिया जिनी तू जनियो हे तै पासो ओए लद गए तू अजे ना पतीण ओहे फरीदा मन मैदान कर टोए टिब्बे लाहे अगे मूरन आवसे दोजक संधि पाई महला पंजमा फरीदा खालक खलक मैं खरक वसे रब माए मंदा किसनु आखिए जां तिस बिन कोई नाए फरीदा जे देह नाला कपिया जे गल कपे चोख पवनए ते मामले सहानए ते दुख फरीदा चलन तन से चबन चलन तन से सुनियर बह गए हेड़े मुते ताहा से जानी चल गए फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना हंडाए देह रोग न लगाए पल्ले सब किश पाए फरीदा पंख परहुनी दुनी सुहाबा बाग नौबत बजे सुबह सो चलन का कर साज फरीदा रात कथोरी बंडी है सुतियां मिल न पाओ जिन्ना नैन निद्रा बले तिन्ना मिलन कुवाओ फरीदा मैं जानिया दुख मुझकू दुख सबाया जग ऊचे चढ़ कै देखिया

तलिया खुंडे काग अजय सो रब न बहड़ियो देख बंदे के भाग कागा करंग टंडोलिया सगला खाया मास ए दोए नैना मत छोहो पर देखन के आस कागा चूंड न पिंजरा बसे ताई उडर जाहे जित पिंजरा मेरा सो बसै मास न ते दुखाहे फरीदा गोर नमाणी साड करे

गोरा से निमानिया बैसन रूहा मल आखी सेखा बंद गे चलन अज के कल फरीदा मौते दा बना इवै दसै

ला बैठा केल करेंदे हंजनो अचिंते बाज पए तिस रब दे केला विसरिया जो मन चित नचिते सन सो गाले रब किया साडे त्रै मन द्योहरे चले पानी अन्न आयो बंदा दुनी बेच वात सुनी बन मलकल मौत दया बसे सबदर बाजे पन तिना प्यारिया पाहिया अगे दिता बन वेखो बंदा चलिया चौह जनिया दे कन फरीदा अमरज कीते दुनी बेच दरगे आए कम फरीदा हो बलहारी तन पंखिया जंगल जिन्ना वास ककर चुगन थल बसन रब न छोड़न पास फरीदा रुत फिरे बन कंबिया पत चढ़े चढ़ पाहे चारे कुंडा ढूंढिया रहन किथाऊ नाय फरीदा पाड़ पटोला तज करे कंबरड़े पैरे ओ जिनी बेसी सो मिलाए से बेस करे ओ महला पंजमा काए पटोला पाड़ते कंबरड़ी पैरे हे नानक कर ही बैठिया सो मिलाए जे नीयत रास करे महला पंजमा फरीदा गर्भ जिना वड्याईया तन जोपन आगाहा

जीव दड़ो मोयो हे जे तै रब विसारिया ता रब न विसरियो हे। महला पंजमा फरीदा कंत रंगा भला।

सबर मंच कमाणे सबर का निहनो सबर संदा बाण खाल खता ना करे सबर अंदर सब सबर

करै वाथी वे दरिया टुट न थी वे बाहड़ा फरीदा दरवे से गाखड़ी चोपड़ी फरीदा एक नक ने चालिए दरवे सावीरीत तन तपे तनूर ज्यो बालन हड बलान पैरी थका सिर जुला जे मुपरी मलाना।

जग किए सगल जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिंडी रंजना मचाओ। सिखी सिख्या गुरु विचार नदरी करम लगाए पर कुल चरका चक्की चक तलवर रोले बोत अनंत। लाटू मधानिया नगा पंखी भोंदिया लैन सा सुए झाड़ पुआई जंत नानक पौंदिया गंत नंत। बंधन बंद पुआए सोए पय किरत नचै सब कोए नच नच से चले।

दर्शन रूप पार तीर्थ नैर च पूजा गरवास बेकार जोगी सुनत हवन जेते अल।

वस्त्र ना पहरे एनस करे मोन विगुत है क्यों जागे गुरबिन सुता पग पेतान अपना किया कमान अलमल खाई सिरसाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई बिन नावे किस्ता है ना पाई रहवे वाड़ी मणि मसानी अंदर न जाने फिर पछतानी

0: कब दमन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी।
1: पढ़िया होवे गुणगा तो भी साथ न मारिए, जेहा काले काल ना तिगे हो नौ पचारिए। ऐसी कलन खेडिए जिधर के गया हारिए, पढ़िया अदे ओमिया विचार के विचारिए, मोहत लसो के मारिए।

0: कथन कहण को सोची नाही, जो पेख तिस बाण आवे। सोई जाने करने हारा, किता क्या बेचारा। अपनी गत मित आपे जाने, हर आपे पूर भंडारा। ऐसा रस अमृत मन चाखिया, त्रिपत रहे आघाई। कहो नानक मेरी आसा पूरी, सतगुर की शरणाई। ऐसा रस अमृत मन चाखिया, त्रिपत रहे आघाई। कहो नानक मेरी आसा पूरी, सतगुर की शरणाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे, गुरु सवारे, अति सत्कार योग सतसंगी जिन्हों वड़ पा गए, जिथे आप जिया ने अमृत वेले के पावन सजे हुए दीवान दियां हाजरियां भरदियां शब्द चौंकी आसा की वार दे कीर्तन श्रवण कीते ने। सरबादे भले की अरदास उपरंत सतगुरां ने जो पावन मुख वाग की दात बख्शिश की है, पवित्र उपदेश आप संगतां ने श्रवण किए ने। समा है पावन मुख वाग की कथा विचार का। सेवा निभाउणगे सत्कार योग भाई गुरशरण सिंह जी चीमा। आओ तिना पासों पावन मुख वाग की कथा विचार श्रवण करिए जी। भुलां चुकां की खिमा, आप संगतां का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समर्थ, डोलन ते राखो प्रभु।

तेते अवगुण हमारे, दया करो किश मेहरे पावो, डूबदे पत्थर तारे, जीड़ा अगन बराबर तपे, पीतर वगै काती, प्राणवातु नानक हुक्म पछाणै।

दया करो किस मेरे बाबू, डुबदे पत्थर तारी, जीड़ा अगन बराबर तपै, पीतर वगै काती, प्राणवात नानक हुकम पछाणै।

खिरत खपत अजहू ना चेते, अब जग जान जो मन रहे, जह का बिशुरा ता थिर लहे, बावने अखर जोरे आन, सकिया ना अखर एक पछाण, सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अन पै रहै,

भोगत हर का नाम जन का रूप रंग नाम जप का फल न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई।

सैन मुख पियाव बैठ को दैन इहु निर्गुण गुण कछन बुझै बख्श रोत नानक सी जय जे प्रसाद धर उपर सुख बसै सुत प्रातमीत बंता संहसै जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पाप कुमला जे प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संसात बसा दीने हस्त पाप करणित रसना तिस त्याग अवर संरचना ऐसे दुख मूढ़ अंत प्यापे नान काल लिहु प्रयापे आदि अंतु राखण हा तिसो प्रीत न करे कृपा जाकी सेवा नाम पावे

अंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तू असगवन करतार करना मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै तरै साग साई स्वभन चीत जो पैराई ता सो प्रीत बलुआ के ग्रह भीतर बसै अंत केर मै रंग रसै दृढ़ कर माने मने प्रतीत काल ने आपे मूड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोत्रो याहू जो उत्पन्न कई जन्म नानक राख लिहु अपन कर कर्म तू ठाकर तुम पैर दा जीवपन सब तेरी राज।

जाके मन लागा प्रमीठा सर्व सुख ताहु मन बूठा जिसने अपना हुक्म बनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगणत साहु अपनी देरा खात पीत परते अंधे उलास अपनी मान कश बहर साहु ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खूब है बोल उसका विश्वास न होवे जिसके वास्त तसे आगे राखे प्रभु की आज्ञा माने मत है उसते चौकन कृनिहार नान साहिब सदा दयाल अनक भांत मह के हे सर पर हुव जान रेत बिरख की छाया सुरंग ला प्यो बिन सेव मन पछताए जो दिसे सो चरण हार लवट रहे उते अंधे अंधार बटाओ सूजो लावे नेहे ताकु हाथ ने आवे के हे मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नान क्या प्रलाई मिथ्या तन तन कुटंब स्वाय मिथ्या हुमे ममता माय मिथ्या राजू मतन माय मिथ्या काम क्रोध विकराल

तारी। जेहे प्रसाद तेरा सुंदर रूपा सो प्रसिमर हो सदानूपा, जे प्रसाद तेरी की जात सो प्रसिमर सदा निराद। जेहे प्रसाद तेरी पात्र है गुर प्रसाद नानक जस का है, जे प्रसाद सुने करना जे प्रसाद पेखे विस्मा, जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे

का अगम अगार पापन सोए जो जो का है सुमुक्ता होए सन्मीता नानक बिनवंता साजना के अचर कथा पदे साज

ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी पनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनि सलोक।

अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्स पारत रूप न पेख नेतर साथ कीटर संसंग हेत कर्ण सुने काव की निंदा सबते जाने आपको मंदा गुरुपुर साहब विख्या प्रहर मन की बासना मन ते टर इंद्री जित पंच दो ते रहत नानकोट मदे को ऐसा परस बैसनो सो जिस उपर सो प्रसान बिसन की मैं ते हुए पिन कर्म करत होवे ने कर्म

उत्तम हुआ। भगवंत की टहल करे नितनीत, मंत्र अर्फ बिशन प्रीत, हर के चरण हृदय बसाए, नानक ऐसा भगौती भगवंत को पावे। सो पंडित जो मन प्रबुद्ध, राम नाम आत्म शुद्ध, राम नाम सार पीपै, पंडित कै उपदेश सजग जीपै, हर की कथा हृदय बसावे। सो पंड फिर जो न आवे, वेद प्राण समृत बूझे मूल, सुख में जाने अस्थूल, चवरण को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चवरण में जपै कूना।

सतन आपे करण करा जोग प्रभाव सोई फुन होग पसरुआ पुय अंतरंग रखे न जाय पा ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगा पा ब्रह्म करता बिना सदा सदा सदा दया सिमर सिमर नानक पे निहास लोक उस्तत करहे अनेक जाने अंतर पार पा नानक रचना प्रवृति बहु विद्यान प्रकार परे कई कोट हुए पुजारी कई कोट चार पिहारी कई कोट पैदवासी कई कोट बन प्रमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान तारहे कई कोट कब का विचार है

अमर पै सत्सद जीवै। कई कोट नाम गुण गावे आत्म रसु सह समावे, अपने जन को सा सा समारे। नानक परमेश्वर के प्यारे सलोक करण करावन करण कारण प्रभु कह दूसर नाई कोय। नानक तिस बलहारणे जल थल मही रसोई अठ पदे।

का साजा। कबहू अपकीर्त में आप है, कबहू भला भला कहावै, जो प्रभु राखे तिवी रह, गुरप्रसाद नानक सच कहे। कबू हुए पंडित करे बख्यान, कबू मोन तारी लावे तान, कबू तट तीर्थ स्नान, कबू सत साधक मुग्यान, कबू कीट हस्त पतंग हुए जियान, कजोन भरमे परमिया, नाना रूप जो सुहाग दिखाए, जो प्रा पाए ते बिन चावै, जो तिस पावे सोई हुए, नानक तू जाव न कोए, कबू सात संत उपाय उस स्थान ते बो न आए, अंतर हुए ज्ञान प्रकाश उस स्थान का नहीं विनाश, मन तन नाम ते करंग, सदा बसहे पा ब्रह्म का संग, जो जल में जल आए खटाना, त्यो ज्योति सा जो समाना, मिटकै गौन पाए विश्राम, नान प्रभु के सद कुरबान सलोक, सुखी बसै।

अवतार अनक तपस्या करे अंकार नरक सर फिर फिर अवतार अनक जतन कर आत्म निद्र पै हर दरगे कोह कैसे गवै आपस को जो भला कहावे तसे भलाई निकट न आवे सर्व करें जा का मन होए कहो नानता ताकि निमर सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब उसको सुख नाई कोए जापे जाने मैक्ष करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारी को बैरी मीता तब लग नेह चल नाही चीत जब लग मोह मगर समाय तब लग धर्म राय देश जाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक को छूटे सहस खटे लाख कोट तावे

गए। संत के दुखी को सब त्यागै, संत का दुखी मांकारी, संत का दुखी सदा भिखारी, संत का दुखी जन्मे मरै, संत के दुख न सुख ते डरै। संत के दुखी को नाई ठाव, नान संत भविता ले मिलाए, संत का दुखी अरबी ते टूटै, संत का दुखी कितै काज न पहुँचै, संत के दुखी को आद, संत के दुखी को ध्यान परमाइय, संत का दुखी उजर पाइय, संत का दुखी अंतर तिथ होता, जो सास बिना मृत के लोथा। संत के दुखी की जड़ कृष्णा अपन बीजा पेखा, संत के दुखी को अवन राखण हार, नान संत भागता दे उपार, संत का दुखी उम्र लाए, जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजाए, जो पाप की दनी त्रापै, संत का दुखी छुटे अकेला, जो बुआड़ तिरखेत मैं दहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी साध मिथ्या कहत, किरत निंदका तुरही पिया, नानक जोत पाए सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दर गय मिल सजाए, संत का दुखी सदा से काय, संत का दुखी नाम मरे न जीवाई है। संत के दुखी की पूजे न्यासा, संत का दुखी और चले निराशा, संत का दुख न तिष्ट कोई, जैसा भावित ऐसा कोई होए, पिया कृतन बेटे कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट तिसके उ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रकृत क्रोधन रात तिसह त्याव साख रास, सब कुछ बाते का किया, जैसा करे तैसा कोतिया, अपना खिलाफ करने हार, दूसर कौन कर विचार, जिसनु कृपा करे तिसे अपन नाम दे बड़पा की, नानक जन से सलोक। तजहो सियान सुरजनो सिमरो हर हर आए,

भूत सुखोय तुका नाम राखण पुरोय सिमर सिमर सिमर सोय नानक पिन लागे कोय उस्त मन में का निरंकार कर मन मेरे सत पिहार निर्मल सुनामत पियो सदा सहला कर लै जियो नैनो पेक ठाकर का रंग सा सम बिन से सब संग

अत सूरा जे को कहाय प्रौखी कला बिना कहता वे जे को होए बहे दता तिस तीन हार जाने को बार जिस गुरप्रसाद टूटे हो रोख नान सोजन सदा रोख जो मंदिर को थमे थमन त्यों गुर का शब्द मने अस्तमन है।

गुण धार आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवको दे मोह माया के संग न लेप मन में राखे हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नान भरम मोह दुख तहते नासे।

देखो सोई ओत पोत रव्या रूप रंग भये प्रगाल साध के संग रच रचना अपनी करतारी अनख बार नान फुलहारे सलोक साथ न चाले बिन भजन बिख्या सगरी चार हर हर नाम कुमाफना नानक एहो तन साठ पदे चरण सत सरपरसन हार संत जनम करो बचार एक सुन नाम उतार अवरूप पासा मीर पसार चरण कमर दमे उतार करण कारण सुपर समरथ दृढ़कार गह हो नाम हर बथ एहो धन संतो भगवान संजना कन मिल मंत एक आस राखो मन माय सब रोक नानक मिट जाय जिस धन को चार कुंट उड़ता है सो धन हर सेवा ते पाए जैसो कुन बचे मीत सो सुख साधु संग परीत जसो बाको करहे भली करणी सा सुबह प्रार के सरणी

सुपाव पाव बिन से पूर्ण हो आस भक्त पाई आत्म प्रगा तत्कर जाय बसे बनासी कहो नानक काठी कहो नानक काठी जम फासी तल प्रचार के जन साचा जन मरे सो काचो खाचा

पुतिन। जब अपने आप आपार ब्रह्म तब जब अपने आप आप तारे तो सगन अवसगन का विचार है। जे अपन ऊचा अपने आप नीरा ते कौन ठाकुर कौन कहिए चीरा। बिस्मन बिस्म रे बिस्मा नानक अपनी गत जानु आप। जय अषद शेद भेस माया ऊहा कसे व्याप्त माया सगुआ पे उदेस ते गुण का नाई प्रवेश। जय एक है एक एक भगवंता ते कौन चिंत कसे लागे चिंता। जे अपने आप पति आरा ते कौन कथे कौन सुनने हारा। बहु प्यंत उसते ऊचा नानक आपसको आपे पहुँचा। जे आप रचे प्रपंच कार ते कुण में कीनो विस्तार। पाप पुन ते पई कहावत को नरक को सरपंचावत। आर जाल माया जंजाल होमे मुह परम पे पा दू सुख मान पमान अनक प्रकार क्यों बखियान।

संग्रचनन जिन जाता तस्के रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने करण करावन हर प्रजाने अंतर बसे बार पियो ही नानक दर्शन दे सम्भो ही आप सत किया सब सत ते प्रभु ते सगरी उत्पात

जय जय शब्द अनर्प जय सुन अन करे प्रगा जय प्रगटे गोपाल महंत के माथे नानक उतरे तिन कै साथे सरण जो सुन सरणी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट के बैर भय सवरेन अमृत नाम सात संग लैन सो प्रसन्न पय गुरुदेव पूर्ण होय सेव की सेव आल जिंजाल विकाते रहते राम नाम ससना कहते कार प्रसाद या प्रतारी नानक विखे पहमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सब तन एकाग्र जीत

दान विषादान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगर टल

हम अंदुले को गुरे अंचल दीजै, जन नानक चलै मिलन था। हम अंदुले ज्ञान ही ने अज्ञानी, क्यों चालै मार्ग पंथा। हम अंदुले को गुरे अंचल दीजै, जन नानक चलै मिलन था। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी सात संगत जी, अज सेवक परिवार वालों सत्कारयोग भाई महताब सिंह अते बीबी सुंदर कौर की सालाना मिठी याद विच हरनूर कौर, गुरमहक कौर, जपलीन कौर, हरसीरत कौर, शमीत कौर, अजूनी कौर सुतना वालों सतगुरु की बाणी के ओट आसरे परसद्या श्री सुखमणी साहब के पाठ करवाए गए। सतगुरु समूह परिवार उत्ते मेरा भरिया हाथ रखण, परिवार वालों जिहड़ा भी माई भाई पहुंचया है सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। हुण कड़ाह प्रसाद की देग वरत रही है, गुरु के लंगर परिवार वालों तैयार करवाए गए ने। सुआब समूह संगत नूं साख संबंधियों बेनती, आप जी ने छाके जाने की कृपालता करनी जी। तो इत्थे ही दीवान की समाप्ति है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: जिन कीती सो पार पया।
1: पौना ने करती के बातां, जो कुछ करना सो करेगा। सोदरागा संभाला पहला एक ओंकार सतगुरु।